0: ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: SBS kick off.
2: A new music station celebrating football anthems from around the world.
1: It's time for Africa. It's live now
2: on DAB Radio, the SBS audio app,
1: online and SBS on demand.

जरूर होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।

0: your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो?
2: कुछ भी करा रहा हमसे कहना, यहाँ के डाउन है।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 28 जून 2026 की रविवार वाली शाम और आप सभी को वैशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज चलाएंगे हम आशा भोसले के गीतों की एक प्यारी सी रेलगाड़ी. आज आप मुझे बताइए आशा भोसले के ऐसे कौन से गीत हैं जो आपको बहुत पसंद हैं. लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद करेंगे चर्चा कि अपने आसपास की दुनिया पर थोड़ा सा और ध्यान देकर के आप कैसे बचा सकते हैं फ्यूल पर होने वाला आपका खर्चा. जिसके बाद लेकर के आएंगे सप्ताह भर का न्यूज रैप एक फटाफट बुलेटिन में आपके लिए, और फिर बात करेंगे रश्मिका मंदाना के जीवन से जुड़े सुने अनसुने किस्सों की. इसके बाद SBS फ्लैशबैक में आपकी मुलाकात करवाएंगे मालिनी अवस्थी से, जहां वो आपको सुनाएंगी अपने कुछ पसंदीदा गीत भी. और इसके अलावा रहेंगे आपकी पसंद के गीत आशा भोसले के आज की गीतों की रेलगाड़ी में. तो आपको मुझे ये बताना है कि आशा भोसले के ऐसे कौन से गीत हैं जो आपको बहुत पसंद है. 04397997 हमारा नंबर है. जल्दी जल्दी संदेश भेजिए. तब तक मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ क्या आज के संक्षिप्त समाचार. प्रस्तुत है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ. सरकार किशोरों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ और कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है. इस सप्ताह संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर अधिकतम जुर्माना बढ़ाकर 9,90,00,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 99 मिलियन डॉलर तक किया जा सकता है. साथ ही ई सेफ्टी आयुक्त को नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे. सिडनी विश्वविद्यालय में डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कल्चर के प्रोफेसर टेरी फ्लू का कहना है कि 16 वर्ष से कम आयु के लगभग 70% बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट अब भी सक्रिय हैं. उनका कहना है कि जुर्माने की राशि बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ई सेफ्टी आयुक्त को मिलने वाले अतिरिक्त अधिकार अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं. फिलहाल ई सेफ्टी आयुक्त कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ अदालत में कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर लेबर सरकार के विवादास्पद टैक्स सुधार कानून पारित होने के बाद कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने कहा है कि सरकार निवेश संपत्तियों से जुड़े तथाकथित विडोज टैक्स के मुद्दे को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करेगी. ये मामला उन निवेश संपत्तियों से जुड़ा है जिनके संयुक्त मालिकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने या दंपत्ति का तलाक हो जाने की स्थिति में कुछ टैक्स रियायतें समाप्त हो सकती हैं. जिम चामर्स ने कहा कि नए टैक्स नियम लागू होने से पहले इस खामी को दूर कर लिया जाएगा. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा. इस बीच स्काई न्यूज से बातचीत में विपक्ष लिबरल सांसद जूलियन लीजर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग इन टैक्स बदलावों से खुश नहीं है. वहीं मरीन रेस्क्यू एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ORRCA यानी ऑर्का का ऑस्ट्रेलिया में वार्षिक वेल गणना दिवस आयोजित किया जा रहा है. वेल सेंसस डे के 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुके इस कार्यक्रम के तहत देश भर के 27 अलग अलग स्थानों पर वॉलंटियर वेल्स की मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं. प्रतिभागी पूरे दिन वेल के देखने की संख्या, उनके व्यवहार, मौसम और समुद्री परिस्थितियों के साथ साथ वेल के समूहों से जुड़ी जानकारी भी रिकॉर्ड करते हैं. और अब बात फीफा विश्व कप 2026 की. DR कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपने इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में जगह बना ली है. ये विश्व कप में DR कांगो की पहली जीत भी है, जो टूर्नामेंट में उनकी पिछली और एकमात्र भागीदारी के 52 साल बाद आई है. यान विसा ने अपनी टीम के लिए 2 गोल किए. पहला गोल पेनाल्टी पर और दूसरा स्टॉपेज टाइम पर आया. उज्बेकिस्तान के मुख्य कोच फाबियो कैनावारो का कहना है कि उनकी टीम मैच के अंत तक ऊर्जा खो बैठी, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर दिखा. और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इस सप्ताह वेनेजुएला में आए दो भूकंपों से मरने वालों की संख्या 1400 से अधिक हो गई है। मलबे में फंसे सैकड़ों लोगों की तलाश अब भी जारी है। राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए विदेशी टीमें वेनेजुएला पहुंच रही हैं। इस बीच कई लोग सरकार की ओर से पर्याप्त मदद न मिलने को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि मलबा हटाने के लिए पर्याप्त मशीनें उपलब्ध नहीं है। वहीं विपक्ष से जुड़ी एक वेबसाइट के मुताबिक 55,000 से अधिक लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और अंत में चर्चा भारत की। भारत में दिल्ली और उत्तराखंड में संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों को मिले एक धमकी भरे ईमेल के बाद धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस ईमेल की सत्यता और उसके स्रोत की जाँच कर रही है। उधर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। केर पान्योर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां एक युवक की मृत्यु हो गई। कई सड़कें बंद हैं और राहत बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ 28 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। और अब संक्षिप्त समाचार के बाद आइए चर्चा करते हैं कि कैसे डीजल और पेट्रोल के दामों पर पैसे बचाए जा सकते हैं। भाई, हम फ्यूल इन फोकस सीरीज की चर्चा कर रहे हैं, जहां पर बात हो रही है कि खासकर अभी जो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ब्याज दर बढ़ाई थी, उसके बाद अब जो दबाव है वो ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। ऐसे में आपके आसपास की दुनिया में ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिनसे आप पैसे बचा सकते हैं, खासकर फ्यूल पर? और इसके अलावा मैंने आज आपसे पूछा है कि भाई आशा भोसले का कौन सा ऐसा गीत है जो आज आप सुनना चाहेंगे शो के दौरान। गीतों की रेलगाड़ी में 04397997667 हमारा नंबर है। जब तक आप संदेश भेज रहे हैं, आइए पैसे बचाने के कुछ गुर सीखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और इसका असर ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार दिखाई दे रहा है। खासकर इस महीने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने के बाद कई ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के लिए यह आर्थिक दबाव अब दोहरा हो गया है। लोगों को एक ओर पेट्रोल पंप पर अधिक कीमतें चुकानी पड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर किराना, किराया, होम लोन और रोजमर्रा की जरूरी चीजों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड फ्यूल इन फोकस के इस एपिसोड में हम उन मुफ्त और स्वतंत्र सेवाओं पर नजर डालेंगे जो लोगों को आर्थिक तनाव से निपटने में मदद कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आइए सुनते हैं अब ये अंश। मेलबर्न निवासी इम्तियाज अहमद आईटी क्षेत्र में फुल टाइम नौकरी करते हैं, लेकिन परिवार का खर्च संभालने के लिए वे सप्ताहांत और शाम के समय टैक्सी और राइड शेयर वाहन भी चलाते हैं।
3: One job is not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
4: अहमद का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतें समस्या का केवल एक हिस्सा है। कम होते यात्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा बढ़ाया गया कमीशन और रोजमर्रा के बढ़ते खर्च ड्राइवरों के लिए गुजारा करना और मुश्किल बना रहे हैं।
3: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
4: अहमद अब नेशनल डेट हेल्पलाइन से संपर्क करने पर विचार कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया भर में उपलब्ध एक मुफ्त, स्वतंत्र और गोपनीय सेवा है। ये हेल्पलाइन आर्थिक तनाव का सामना कर रहे लोगों को वित्तीय सलाहकारों से जोड़ती है, जो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं और उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करते हैं। नेशनल डेट हेल्पलाइन की विकी स्टाफ कहती हैं कि अब कई लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और खाद्य सामग्री जैसी जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, जिससे अन्य आवश्यक खर्चों के लिए कम पैसा बच रहा है।
5: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
4: Staff ka kehna hai ki bahut se logo ko ye pata hi nahi hota ki unhe bank ya rin dene wali sanstha se aarthik kathinai sahayata, yani financial hardship arrangement, mangne ka unhe adhikar hai.
5: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
4: स्टाफ का कहना है कि सही जानकारी और व्यावहारिक विकल्प सुझाने के लिए वित्तीय सलाहकारों को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझना आवश्यक होता है.
5: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
4: National Debt Helpline से संपर्क करने के तीन तरीके हैं. लोग 1800-007-007 पर कॉल कर सकते हैं, ndh.org.au वेबसाइट पर जा सकते हैं या वेबसाइट पर उपलब्ध लाइव चैट सेवा का उपयोग कर सकते हैं. जो लोग अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हैं उनके लिए नेशनल डेट हेल्पलाइन कॉल के दौरान दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर सहायता की व्यवस्था भी कर सकती है. स्टाफ का कहना है कि मदद मांगने वालों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए व्यस्त समय में कॉल करने वालों को इंतजार करना पड़ सकता है. लेकिन उनकी सलाह है कि यदि पहली बार संपर्क ना हो पाए तो लोग बाद में दोबारा कोशिश करें या लाइव चैट जैसे दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करें. लोगों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वे सामुदायिक संगठनों के माध्यम से उपलब्ध अन्य मुफ्त सहायता सेवाओं की जानकारी लें. इनमें द सैल्वेशन आर्मी की मनी केयर सेवा, कुछ एंग्ली केयर वित्तीय परामर्श सेवाएं, सामुदायिक कानूनी केंद्र, मॉब स्ट्रॉन्ग डेट हेल्प और फाइनेंशियल राइट्स लीगल सेंटर शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड फ्यूल इन फोकस के इस अंश को SBS न्यूज से साहिल मकर और SBS हिंदी से प्रशाली जैन ने प्रस्तुत किया. और अब इस अंश के बाद आइए ले रहे हैं एक छोटा सा अल्पविराम यानी कि ब्रेक, और ब्रेक के उस पार करेंगे चर्चा सप्ताह भर में जो बड़ी खबरें हमारे सामने आई एक फटाफट न्यूज रैप में, और लेकर के आऊंगी आपके लिए आशा भोसले का एक प्यारा सा गीत भी. तो बने रहिए SBS हिंदी पर वृशाली के साथ. आज बहुत सारी फिल्मी चर्चाएं हैं, बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारा म्यूजिक है और है आपकी पसंद का वो सब कुछ जो आज आप मुझसे सुनना चाहते हैं. तो 04397997667 हमारा नंबर है, जल्दी जल्दी संदेश भेजिए. आशा भोसले के कौन से गीत सुनना चाहते हैं वो बताइए. जब तक आप संदेश भेज रहे हैं मैं इस ब्रेक से फटाफट वापस भी आ जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो बने रहिए SBS हिंदी पर.
6: Life's easier when things are convenient. That's why we developed Cameron Grove Estate, a relaxed family-oriented community just 30 minutes from Newcastle. Imagine brand new facilities to make life easy right on your doorstep. Groceries, delicious dining, cute cafes, boutique shops, parks and playgrounds, even a library, all a short stroll from the front door. And with the highway only a short drive away, the workday commute is a breeze. Create a life of blissful convenience. Book a private inspection today. Visit camerongroveestate.com.au.
7: SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर. SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए. SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ. sbs.com.au/food पर जाएं. SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं. कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें. आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं. चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम. SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे.
8: SBS Audio.
1: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
9: यही ज्यादा दिया. चुंबल हाल में.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
1: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
13: Far from the partisan politics.
1: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
13: sbs.com.au/audio.
2: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है. आप सुन रहे हैं वृषाली को और SBS हिंदी पर रविवार स्पेशल में हम चलाते हैं वो गीतों की रेलगाड़ी जो आपकी मर्जी की होती है. आज आप मुझे बता रहे हैं आशा भोसले के कौन से गीत आपको पसंद है. 04397997 हमारा नंबर है और मेरे पास आपके कुछ संदेश आ भी गए हैं और उन संदेशों में मुझसे बताया गया है भाई कि सबसे पहले तो आलोक जी मेलबर्न से कह रहे हैं कि वे 1980 की मूवी उमराव जान से कोई भी गीत सुन सकते हैं, उन्हें उसके सारे गीत पसंद हैं. और पीयूष जी व्हीलर्स हिल से कह रहे हैं नमस्ते. नमस्ते पीयूष जी. और कुमार जी कह रहे हैं कि आई लाइक द सॉन्ग ये पर्दा हटा दो एंड पाँच रुपया बारह आना. तो आपकी पसंद के गीत मैं आपके लिए ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी. आप भी अगर आशा भोसले जी का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए और मैं उसको आज आपके लिए लेकर के आऊँगी. आप संदेश भेज सकते हैं 04397997667 पर. फिलहाल आइए रुक करते हैं सप्ताह भर के फटाफट वाले न्यूज़ रैप पर जहाँ पर हम देश दुनिया और बाकी सारी बातें करते हैं. जैन और सप्ताह भर का न्यूज रैप हाजिर है. फेडरल सरकार का कहना नहीं है ऑस्ट्रेलिया में तेल की कमी. आसियो मुखिया बोले आतंकवाद के खतरे को टालने के लिए करनी होगी और तैयारी. और फीफा विश्व कप 2026 में सॉकरूज अपनी पहली नॉकआउट जीत को बेताब. और अब सप्ताह भर की खबरें विस्तार से. ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा मंत्री क्रिस बावन का कहना है कि देश में ईंधन भंडार पूरी तरह से भरे हुए हैं और कई तेल टैंकर बंदरगाह के बाहर इंतजार कर रहे हैं ताकि भंडारण की जगह खाली होने पर वे अपना ईंधन उतार सके. अपने साप्ताहिक ईंधन अपडेट में उन्होंने बताया कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के पास 44 दिनों का पेट्रोल और 37 दिनों का डीजल और 29 दिनों का विमान ईंधन भंडार मौजूद है. क्रिस बावन ने यह भी कहा कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने के संकेत मिले हैं लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की कृषि मंत्री जूली कॉलिंस ने पुष्टि की है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में H5N1 बर्ड फ्लू का तीसरा मामला सामने आया है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी एक संदिग्ध मामला मिला है. साउथ ऑस्ट्रेलिया में इस वायरस का पहला पुष्ट मामला है. राज्य के प्रीमियर पीटर मालिनोस्किस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई बीमार या मृत जंगली पक्षी दिखाई देता है तो इसकी तुरंत सूचना दें. पुष्ट और संदिग्ध दोनों मामले प्रवासी समुद्री पक्षियों में पाए गए हैं. कृषि मंत्री का कहना है कि फिलहाल कृषि या पोल्ट्री क्षेत्र में इस वायरस के फैलने के कोई संकेत नहीं है और सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की घरेलू खुफिया एजेंसी आसियो के प्रमुख माइक बर्गस का कहना है कि देश में आतंकवादी खतरे का मौजूदा स्तर वास्तविक जोखिम को पूरी तरह नहीं दर्शाता. उनका कहना है कि मौजूदा चेतावनी प्रणाली आज के सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी. उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हिंसा की आशंका बढ़ रही है. साथ ही यूरोप में यहूदी समुदायों से जुड़े ठिकानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार ईरान से जुड़े एक समूह के ऑस्ट्रेलिया में भी सक्रिय होने की चिंता जताई गई. माइक बर्गस का कहना है कि आसियो सरकार के साथ मिलकर लगभग 10 साल पुराने इस खतरे की आकलन प्रणाली की समीक्षा कर रहा है. वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन स्टोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के कारण ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं को हर साल लगभग 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नुकसान हो रहा है. टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री ओम्बुड्समैन और कंज्यूमर पॉलिसी रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायतों के समाधान के दौरान कई उपभोक्ता खुद को असहाय तनावग्रस्त और अनसुना महसूस करते हैं. सबसे आम शिकायतों में अकाउंट ब्लॉक होना, सेवाओं तक पहुंच से इनकार और अचानक अतिरिक्त शुल्क लगना और खराब ग्राहक सेवा शामिल है. इंडस्ट्री ओम्बुड्समैन सिंथिया गेबर्ट का कहना है कि ऑनलाइन सेवाओं में समस्या आने पर उपभोक्ताओं को स्पष्ट और समय पर जवाब मिलना चाहिए. और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार.
4: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ा है। ईरान के ठिकानों पर अमेरिका के नए हमलों और खाड़ी क्षेत्रों में हमलों की खबरों ने दोनों देशों के बीच हाल में हुए संघर्ष विराम की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरीन में शनिवार तड़के कई ईरानी ड्रोन हमलों की सूचना मिली। वहीं ब्रिटेन की एक समुद्री सुरक्षा एजेंसी के अनुसार एक व्यापारी जहाज किसी अज्ञात प्रक्षेप्य की चपेट में आ गया। हालांकि इस हमले की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं यूरोप के कई हिस्सों में इस समय भीषण हीटवेव है। स्कैंडिनेविया से लेकर आल्प्स तक फैली इस हीटवेव के कारण दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई है। कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और गर्मी की ये लहर अब पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ रही है। शनिवार को डेनमार्क में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में भी जून महीने के कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब ये हीटवेव पोलैंड की ओर बढ़ रही है। जर्मनी में भीषण गर्मी के कारण सड़कों की सतह पिघलने और टूटने लगी है। इससे देश के प्रमुख पूर्व पश्चिम राजमार्ग के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ा है, जिसके चलते यातायात अब बाधित है। और अब खबरें भारत से सप्ताह भर की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह सिशल्स की राजकीय यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य इंडियन ओशन क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष भारत की यात्रा कर सकते हैं। हालिया शुल्क विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत जारी है। इस बीच हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत का आभार जताया था। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नियंत्रण रेखा के पास एक परित्यक्त तोप के गोले में विस्फोट से एक चरवाहे की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने सेना पर हमले की अफवाहों का खंडन करते हुए लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा न करने की अपील की। वहीं कतर के रसलफान गैस संयंत्र में विस्फोट में मारे गए 12 भारतीयों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए। उन भारत ने हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए डीजल में 2% आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण के परीक्षण के शुरुआत की घोषणा भी की। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अमेज़न ने भारत में क्लाउड, एआई और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए 2030 तक 48 अरब अमेरिकी डॉलर तक के निवेश की योजना की घोषणा की। वहीं भारत 61 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बन गया है। वहीं घरेलू मोर्चे पर केरल में नीपा वायरस के एक पुष्ट मामले के बाद 104 संपर्कों को निगरानी में रखा गया। और अंत में खबरें खेल जगत से। सोक्रूज फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम का मानना है कि लंबे प्रशिक्षण शिविर और बेहतर तैयारियों ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत किया है। टीम ने 3 मई से अमेरिका के सारासोटा में प्री टूर्नामेंट कैंप की तैयारी की और अब वे शुक्रवार यानी ऑस्ट्रेलियाई समय अनुसार शनिवार को आर्लिंगटन में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में इजिप्ट का सामना करेगी। 27 जून 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह के न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही।
2: और दोस्तों मेरे पास कई सारे संदेश आए हैं। व्हीलर्स हिल से पीयूष जी कह रहे हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान, वो सुनना चाहते हैं। कुमार जी कह रहे हैं कि उन्हें अभी ना चाहो छोड़कर गीत भी बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरे पास एक संदेश आया है जहां पर मुझसे दम मारो दम गीत की गुजारिश की गई है और राजेंद्र वोरा जी कह रहे हैं कि वे आप कहां जाएंगे गीत सुनना चाहते हैं। इसकी आप मुझे थोड़ी और डिटेल्स भेज पाएं अगर राजेंद्र जी, तो मैं ये गाना ढूंढ पाऊंगी आपके लिए। और अगर आप भी आशा भोसले का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल आइए ये गीत सुनते हैं। इसके बाद लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद करेंगे फिल्मी डायरी में रश्मिका मंदाना की चर्चा।
8: थैंक यू शांत शांत शांत अर्जुना शांत। अब आप वो गाना सुनिए जिसको जिनत अमान जी ने 4 चांद लगाए थे।

0: Life's easier when things are convenient. That's why we developed Cameron Grove Estate, a relaxed family-oriented community just 30 minutes from Newcastle. Imagine brand new facilities to make life easy right on your doorstep. Groceries, delicious dining, cute cafes, boutique shops, parks and playgrounds, even a library, all a short stroll from the front door. And with the highway only a short drive away, the workday commute is a breeze. Create a life of blissful convenience. Book a private inspection today. Visit camerongroveestate.com.au.
1: SBS News इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। SBS World News, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS World News हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
2: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
1: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
3: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
4: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को और मेरे पास भाविक जी का संदेश आया है जो कि कह रहे हैं कि उनकी रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए थैंक यू। बिल्कुल, आप रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए वो गाना लाने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं फिल्मी डायरी के पन्ने जहाँ पर चर्चा करेंगे रश्मिका मंदाना की।
5: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। आज जिस फिल्मी अदाकारा की हम बात करने जा रहे हैं, उनका बचपन गरीबी और काफी संघर्ष में बीता था। एक समय ऐसा भी था जब उनके परिवार के पास उनके लिए खिलौने खरीदने के भी पैसे नहीं थे। अपनी डेब्यू फिल्म के हीरो से ही उनको प्यार हो गया था और शादी की दहलीज पर जाकर टूट गई थी सगाई। उन्हें 30 मोस्ट डिजायरेबल वेमेन ऑफ 2017 की सूची में पहला स्थान मिला था। उनका मानना है कि मुस्कुराओ तो दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी।

0: मजा करे स्पॉट कुटे हटी हटी रे
1: लगेगी चोट मचा टच मी नॉट मचा डू यू वांट मचा नॉटी नॉटी रे।
2: जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की।

0: रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कुर्ग में हुआ। उनके पिता का नाम मदन मंदाना और माता का नाम सुमन मंदाना है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कोडागु के कुर्ग पब्लिक स्कूल से की और प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में दाखिला लिया। रश्मिका ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु के MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में दाखिला लिया।
1: तुझे नहीं है मेरी कदर, हम है नॉट मेड फॉर ईच अदर। तुझे नहीं है मेरी कदर, हम है नॉट मेड फॉर ईच अदर।
0: कॉलेज में रहते हुए उन्होंने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस 2014 प्रतियोगिता जीती और मॉडलिंग असाइनमेंट लेना शुरू कर दिया। उसी वर्ष उन्हें क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उनकी तस्वीरों ने फिल्म किरिक पार्टी के निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की।

0: रश्मिका मंदाना ने साल 2016 में फिल्म किरिक पार्टी से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। उनकी ये फिल्म उस साल रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। रश्मिका को एक्टिंग के लिए काफी तारीफें मिली थी। अपनी पहली ही फिल्म के लिए रश्मिका को SIIMA का बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी मिला था। पहली फिल्म हिट देने के बाद वो दो व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी। फिल्म चमक के लिए उन्हें साउथ फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था।
1: सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के।
0: अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में ही रश्मिका अपने को एक्टर रक्षित शेट्टी को दिल दे बैठी थी। रक्षित और रश्मिका की पहली मुलाकात 2016 की ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी के सेट पर हुई थी। ये रश्मिका की डेब्यू फिल्म थी और रक्षित इसके लीड एक्टर और प्रोड्यूसर थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रक्षित उम्र में रश्मिका से करीब 13 साल बड़े थे, लेकिन उस वक्त प्यार के आगे उम्र का फासला छोटा नजर आया।

जुलाई 2017 को रश्मिका और रक्षित ने कर्नाटक के विराजपेट में निजी समारोह में सगाई की थी। उस वक्त रश्मिका की उम्र महज 21 साल थी। सगाई के बाद दोनों के परिवारों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। हालांकि उनकी ये लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग तक नहीं पहुंच पाई और दोनों ने ये सगाई तोड़ दी और साल 2018 में दोनों अलग हो गए। 2018 में रश्मिका ने अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत रोमांटिक ड्रामा चार्लो से की। उस वर्ष मंदाना ने रोमांटिक कॉमेडी गीता गोविंदम में अभिनय किया, जो तेलुगु सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक लाभ कमाने वालों में से एक बन गई। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म देवदास में अभिनय किया। 2020 में रश्मिका ने अपनी पहली तमिल फिल्म सुल्तान हासिल की।

0: रश्मिका मंदाना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्मों से की थी, लेकिन पॉपुलैरिटी और स्टारडम फिल्म पुष्पा द राइज से मिला। और इसी तरह साउथ सिनेमा में नाम कमाने के बाद रश्मिका मंदाना ने फिल्म गुडबाय से हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा, जिसके बाद फिल्म मजनू मिशन में रश्मिका मंदाना ने सिद्धार्थ की पत्नी का किरदार निभाया था। रश्मिका मंदाना ने नेत्रहीन का रोल निभाया था, जो एक वास्तविक घटना से आधारित फिल्म थी जो काफी सुपरहिट हुई। साल 2023 की सबसे बड़ी हिट रही फिल्म एनिमल में रश्मिका मंदाना रणबीर कपूर के साथ नजर आईं। रश्मिका मंदाना की गिनती न सिर्फ साउथ बल्कि हिंदी सिनेमा के भी टॉप एक्ट्रेसेस में होती है। साउथ में एक के बाद एक कई सफल फिल्में देने के बाद रश्मिका बॉलीवुड के दर्शकों को अपना दीवाना बना रही हैं। आज उन्हें नेशनल क्रश के नाम से जाना जाता है। रश्मिका मंदाना ने पुष्पा 2 द रूल में काम किया, जो 2024 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। वो सलमान खान के साथ सिकंदर में नजर आई थी।
1: हर दुआ में तैनु मंगदा के रब्बा जानदा।
0: कन्नड़ और तमिल फिल्मों की खूबसूरत और प्रतिभाशाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने बहुत कम समय में ही हिंदी फिल्म जगत में अपनी जगह बना ली। पुष्पा, एनिमल और गुडबाय की ये एक्ट्रेस इन दिनों चर्चा में है। रश्मिका मंदाना की करियर फ्रंट की बात करें तो उन्हें कुबेर फिल्म में देखा गया था, जिसमें धनुष और नागार्जुन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। साउथ की फिल्म मैसा में भी रश्मिका नजर आईं। रश्मिका विकी कौशल के साथ छावा और आयुष्मान खुराना के साथ थामा में भी दिखाई दी थी। रश्मिका मंदाना को अपने छोटे से करियर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। इतना ही नहीं, इतने कम समय में उनकी अब तक कुल 15 से 20 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। हिंदी ऑडियंस की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज पुष्पा में वो अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई थी, जिसे हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इसी फिल्म के बाद रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश बन गईं।

0: इश्क तेरे। SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के उस पार आपको मिलवाएंगे मालिनी अवस्थी से SBS फ्लैशबैक में, और फिर आपकी पसंद के आशा भोसले के गीत भी बजाएंगे। 04397997667 हमारा नंबर है अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार करेंगे बहुत ढेर सारी चर्चा। बने रहिए SBS हिंदी पर खुशहाली के साथ।

0: पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
1: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
0: SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
2: SBS किक ऑफ,
3: a new music station celebrating football anthems from around the world.
2: It's live now
3: on DAB Radio, the SBS audio app,
2: online and SBS on demand.
1: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
4: ब्रेक के बाद SBS फ्लैशबैक प्रस्तुत कर रहे हैं वृषाली SBS हिंदी पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे मालिनी अवस्थी से, लोक गायक मालिनी अवस्थी से, जिनकी बातचीत चल रही है अनीता बरार के साथ। आइए सुनते हैं, मुझे ये बातचीत बहुत पसंद है।
5: लोक गीतों में लोक जीवन की वास्तविक भावनाएं होती हैं। इनमें साहित्यिक काव्य नियम भले ही ना हो, लेकिन इसका मूल सूत्र तो होता है मानवीय संवेदना, जन साधारण के हृदय के सरल और सहज उद्गार जो वास्तविक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े होते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं भारत में पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी के साथ, जो अपने लोक गीतों से देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। आज वो जिस मुकाम पर पहुंची हैं, उस रास्ते में चुनौतियां तो आई ही होंगी। तो बस यही बात जब उनसे पूछी तो उन्होंने कहा,
6: वो सफर ही नहीं जहाँ चुनौतियाँ ना हो। और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान कहीं भी कुछ भी यदि हासिल करता है या आपके शब्दों में यदि मुकाम पे पहुँचने के भी आसपास है, तो उसकी हकीकत यही है कि उसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया होगा तभी वहाँ पहुँचा है। अनकन्वेंशनल रास्ते पे जब भी कोई चलता है तो सामने इस तरह की चुनौतियां आएंगी। मुझे लगता है जो हौसला देता है आपको अपनी राह चुनने का, वही हौसला भी देता है उन चुनौतियों से लड़ने का। तो बस होता चला गया। बहुत सारी चुनौतियां थी क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक को ही जिंदगी बनाने का फैसला किया। मुझे हमेशा से लगता था कि भारत की जो सच्ची तस्वीर है
5: जी,
6: उसको आप समझ नहीं सकते जब तक आप अपने ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक को, कल्चर को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। बिकॉज मुझे लगता था कि ये गीत नहीं है खाली, ये गीत जो है गीत से भी अधिक उठ करके एक फिलॉसफी है जिस पे हमारा कल्चर खड़ा है आज भी
5: जी।
6: तो जाहिर है उसको थोड़ा सा पीपल did not really see this as something to be, you know, एक फुल करियर इस पे लिया जा सकता है। और दूसरा, एक औरत होने के नाते बाकी चुनौतियां तो नहीं होती है, लेकिन जाती जिंदगी में निश्चित रूप से परिवार के साथ एक सारी चीजों को साथ में करने में ये एक हंसते खेलते होता चला जाता है। बट देन यू हैव टू गिव योर 100% टू एवरीथिंग, म्यूजिक, फैमिली, कमिटमेंट्स, एवरीथिंग। चुनौतियां तो रहती हैं
5: जी, बिल्कुल। तालमेल बना के आप आगे बढ़ती चली गई हैं। आपने बात की है कि जो लोक संगीत है या लोक गीत है वो एक सिर्फ गीत नहीं है, वो एक तरह से संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। उसको समझने के लिए तो क्या सिर्फ लोक गीतों के साथ या लोक संगीत के साथ जुड़ जाना काफी है?
6: देखिए, जब तक आप उसमें यकीन नहीं करेंगे, यदि आप यकीन करते हैं तो फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से आपकी जीवन शैली भी फिर वैसी ही हो जाएगी। और यदि यकीन नहीं करते हैं, आप सिर्फ गाना गा रहे हैं, तो फिर दे विल जस्ट रिमेन सॉन्ग्स। गीतों के भीतर छिपा हुआ जो संदेश है, गीतों के भीतर छिपी हुई जो आत्मा है, जब तक उस पर यकीन नहीं करते तब तक शब्दों में सत्यता नहीं आएगी।
4: जी।
6: तो मुझे लगता है

0: इसमें आपको सबसे पहले तो आदर भाव होना चाहिए, भारतीय मूल्यों के प्रति सम्मान है। यदि आप अपने घर में ही बड़ों की उपेक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग गीत गा रहे हैं, तो ये तो वो डिसऑनेस्टी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही आपने कहा है, गाना तो एक चीज है, लेकिन उस गाने में आत्मा तभी आती है
1: जी
0: जब आप की प्रवृत्ति भी वैसी हो।
1: जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि सिर्फ उनको हम सुन लें तो क्या हमें उस संस्कृति का अनुभव हो जाएगा? जी,
0: ऐसा कलाकार जब आपको सुनाएगा वो तन मन धन से उस भाव से जुड़ा है तो वो भाव आप तक
1: पहुंचेगा ही।
0: अब मैं यदि छठ के गीत आपको सुनाऊं तो यदि मैं आपको आपकी माँ की याद दिला सकूं, आपके गांव के पोखर नदी तालाब की याद दिला सकूं, घर में पूजा कैसे होती उसकी याद दिला सकूं, तब तो सार्थक है
1: जी,
0: वो गाना बजाना। और वो दृष्टि भी मैं आपको तब दे पाऊंगी जब मैं पूरे समर्पण के संग गाऊं। तो निश्चित रूप से लोक गीतों में वो ताकत है कि इंसान को रूहानी तौर पे पहुंचा दे वहां
1: जी।
0: जो उसमें डिस्क्राइब्ड है, बेटी की विदाई है, शिशु का जन्म है, खेती किसानी के है, फसल कट रही है, किसान खुशी से गा रहे नाच रहे हैं, यदि मैं गाऊं तो आप वाकई भारत के उस गांव में पहुंच जाएं। ये ताकत कलाकार में भी होनी चाहिए कि आपको ट्रांसपोर्ट कर दे।
1: लोक संगीत का तो पूरा खजाना है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कई बार ये जो आंचलिक गाने हैं उनमें शायद कहीं एक ही पहलू दिखाई देता है, उसको आप हंसी मजाक कह लें या कभी कभी उसी हंसी मजाक में कुछ अतिशयोक्ति भी हो जाती है, तो क्या कहीं कहीं कुछ छूट रहा है क्या?
0: नहीं, मुझे लगता है कि लोकगीत तो बहुत सार्वभौमिक विषय पर बात करते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड विषय होते हैं लोकगीतों के
1: जी।
0: सुख है, दुख है, खुशी है, उत्सव है, पीड़ा भी है, दूसरे का सम्मान भी है, साथ साथ शिक्षा भी है। ये तो डिपेंड ये करता है कि आपके किन लोकगीतों को आपने सुना है। चूंकि भारत तो उत्सव धर्मी समाज है
1: जी।
0: तो हमारे यहाँ पर उत्सव के लोकगीत हम अधिक सुनते हैं, जैसे होली है, शादी ब्याह के गाने हैं, उनमें हम त्योहार मनाते हैं। और त्योहार मनाते समय चूंकि भारत सामूहिकता में विश्वास करता है तो जाहिर है वो गीत भी उस हर्ष अतिरेक की बात करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे गाने भी मिलते हैं जहां पर एक हिरन एक मनुष्य को गुरु के समान ज्ञान दे रहा है, ऐसे ऐसे भी गीत मिलते हैं जहां पर बेटी विदा हो रही है और पिता से कह रही कि इस नीम के पेड़ को मत काटना मेरे पिता, ये नीम का पेड़ कट गया तो इसकी चिड़ैया कहाँ अपना बसेरा ढूंढेगी।
1: मैं आपसे
0: इट डिपेंड्स
1: जी, मैं आपसे इसी की बात करने जा ही रही थी और आपने खुद ही उस विषय को उठाया कि संबंध भी है वहां पर, संस्कृति भी है और कहा जाए कि पर्यावरण की बात भी है उन गानों आंचलिक गीतों में। और आपने खुद ही इस गीत की याद दिला दी है जिसमें बहुत बड़ा संदेश है, तो एक आध पंक्ति हमारे लिए।
0: मैं उसको सुनाऊंगी
1: जी जी
0: जरूर। और मैं कहना चाहूंगी बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस गीत को सुन करके आप सब भी जितने हमारे भाई बहन सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को न सिर्फ सुने बल्कि गर्व करें कि हम इस संस्कृति के वारिस हैं। ये आज दुनिया में एनवायरमेंट पे चर्चा हो रही है, पेड़ ना काटो उसके संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गानों में भी ये सिखाते चले गए। मैं सुना रही हूँ।
2: बाबा ने मिया

0: वाह, क्या बात है, बिल्कुल आपने कितनी प्यारी सी बात कही है और उतना ही प्यारा आपने हमें सुना भी दिया। और आपके लिए खास तौर से हमारी एक फरमाइश आई है कि आप कांच ही बांस की बहगी, आपका कोई गीत
1: जी
0: है। जी, तो आप एक पंक्ति अवश्य सुनाएं।
1: जा

0: तो ये स्वाभाविक था आपका लोक संगीत की तरफ झुक जाना?
1: नहीं, स्वाभाविक तो बिल्कुल नहीं था, सिवाय इसके कि पूर्वांचल में मैं पली बड़ी,
0: जी
1: गोरखपुर में, जहाँ पे भोजपुरी का एक कह सकते हैं प्रभाव पड़ा,
0: जी
1: लेकिन एक कह सकते हैं शहरी प्रभाव था मेरे माता पिता पे, मेरे बड़े भाई बहनों पे मेरा। लेकिन जन्म कन्नौज में हुआ और मैं बचपन से, मुझे भारतीय रहन सहन, भारतीय खान पान, भारतीय विचार आचार सब भाते थे मुझे। अपनी ताऊ जी, ताई जी, ताई जी लोग बैठ के ढोलक बजा के गाने गाती थी, तो मैं समझने का प्रयास करती थी कि इन गीतों को जो गा रही हैं उसके पीछे क्या कमाल की भावना है। क्योंकि एक मुझे, मैं बताऊं, शिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है, जब आपने अध्ययन किया होता है, मनन किया होता है, तो आप हर गीत को सुनते और गाते तो हैं ही, उसके साहित्यिक पक्ष पे भी चिंता करते हैं, ये गाना क्यों आया होगा, ये गाना किस परिस्थिति में बना होगा, ये गाना कहना क्या चाहता, आखिर ये गाना क्यों आया। वो एक मेरी प्रवृत्ति भी थी हमेशा से, तो उसके कारण ऐसे ऐसे गीत मेरे सामने आए कि मुझे लगा कि ये काम मुझे करना ही चाहिए, और भारत की, अपने पूर्वजाओं की एक सुंदर सशक्त तस्वीर सामने रखनी चाहिए। और फिर बस होता चला गया, फिर हियर आया, तो बस जीवन यही बन गया
0: क्या
1: जी।
0: बात है। लेकिन क्या कोई एक ऐसा क्षण या कोई ऐसा गीत है जिसने आपके जीवन की ये राह बदल दी थी?
1: कई गाने हैं, लेकिन एक गाना निश्चित रूप से, हमारे यहाँ पे एक सुहर मिलता है बच्चे के जन्म का, जिसमें किसी का, बच्चे का जन्म हो रहा है, उसके उत्सव में जो भोजन पकाया जा रहा है उसमें उस हिरण का वध कर दिया गया है, और वो हिरणी रोती हुई किस तरह अपने शोक को मनाती है। जब ये गीत पहली बार मैंने पढ़ा, सुना और मैंने गाया, आज से 25 28 28 साल पहले, तो मैं दंग रह गई कि एक शिशु के जन्म से बड़ा आनंद का कोई उत्सव नहीं, और हमारे पूर्वज इतना करुण प्रसंग आज भी गाते हैं, आखिर क्यों। और तब समझ में आया कि हमारे पूर्वज ये सिखाने के लिए जाते रहे, कि मैं उसकी दो पंक्ति सुना देती हूँ।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो ये बस गीत सुन करके दिशा बदल गई, दशा बदल गई, जीवन की सोच बदल गई।
1: क्या बात है,
0: क्या धन्य हमारा समाज है जहाँ हिरनी के शोक को आज भी याद करते हैं हमारे पूर्वज। क्या धन्य संस्कृति है।
1: और इसी के साथ अब आपकी पसंद की गीतों की रेलगाड़ी आपको सौंप करके वृशाली घर जा रही है, लेकिन फिर मुलाकात होगी। आपको क्या करना है, आपका असाइनमेंट बहुत सालों से एकदम फिक्स्ड है, अपना ख्याल रखना है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। फिर मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: The sun's gone down,
1: but the music is up.
0: Nights on SBS South Asian.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

नहीं बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

के तुझे भी कम ना रहे जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यारा सा उसमें नहीं शक मुझे But I want you to stay

सपाटों के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

Natural.

0: SBS South Asian.
1: Show mercy on it.

SBS South Asian. Your news from here and hits from home.

0: SBS South Asian.
1: Australia's destination for everything South Asian. हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है

SBS South Asian. Hey, yo.

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं.

कैसे हैं आप लोग?

जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। अमीरों वाला ख्वाब चाटो इनकी धूल, दिखने में सुंदर ये कांटे वाले फूल।

चुप क्योंकि अमीरों की इजी बेल, अमीर है खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल। गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल। मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेट फुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल। अकेला ही करूंगा मैं सारा वेट पुल, याद रखना ऑफ द फन एंड ओनली बिग पुल।